सगल द्वार को चंड के गयो तू हर द्वार बाय कहे कि लाजास गोविंद दास तुहार राम कलि महला तिजानंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद बे मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु तपाए सहज सते मन विजयाय विदाया राग रतो न पवार पारिया शब्द गाव न्याया शब्दो तावो हरि केरा मन जिने वसाया कहीं नानक नंद होआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सद रहो हर नाले हर न रहो तू मन मेरे दुख सब विसरना अंगीकारो करि तेरा करज सब सवरना सब नागला समरत स्वामी सुखियो मन हो विसारे कहीं नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सचे साहेब किया नहीं कर तेरे करते तेरे सब कुछ जिस देह सो पावे सदा शिव सला तेरे नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वजे शबर कनेरे कहीं नानक सच साहेब किया नहीं कर तेरे सच नाम मेरा दार सच नाम अधार मेरा जिन भूख सब गवाया कर शांत सुख मन आए वसिया जिनी च सब पुजाया सदा कुर्बान किता गुरबत जिस देह वडियाया काहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो सच नाम मेरा दारो भजे पंच शब्द तित कर सबागे कर सबागे शब्द भजे कल चित कर दारिया पंच दूत तुर वास कीते कल कंतक मारिया तुर कर्म पाए तुर जन को सी नाम हर के लागे कहीं नानक ते सुख होआ तीतगार अनहद वाजे मुदावने महला पंजवा थल विच तिन वस्तु पायो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पायो जिसका सबस आधारो जे को कावे जे को बुंजे तिसका होय उदारो ए वस्त तजी नहीं जाए नित नित राख उदारो तम संसार चरण लग थारिये सब नानक